ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है

भारतीय बटूर भगाना होगा। एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा, जिससे हो कौम की रक्षा

सीता को वापस ना दिया, मानो कि वो समझा नहीं। कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत तरह समझाया, लेकिन दुर्योधन मूर्ख वक्त को पहचाना नहीं। आ गया है वक्त अब सुनामियों, अब तुम इसे गवाना नहीं। पीछे धोखा खा चुका है।

यदि ये नाद आपके हृदय तक पहुंचा हो तो बजरंग नाद को लाइक करें और भक्ति की इस यात्रा से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति.
1: Preserving the dreams of our ancestors. Radio Jagriti, 102.7 FM.